भगत तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी और अनक अनेक अनंता तेरी अनक तेरी

तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब साय का जान होई।

चौपाई संबत सत्रह सहस प्रणजाय अर्ध सहस तेन गह जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रव बारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोपख्याने त्रया चरित्रे मंत्री पूर्व संवादे 405 चरित्र समापतम सत शुभम सत अवजू दोहरा दास जान कर दास पर की जाए कृपा अपार आप हाथ राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपाई मैं ना ग्रह प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबू न त्याऊ

रघुबर करा सगरीपुरी समेत चौपाई, जो ए कथा सुने अरगावै दुख पावते निकट न आवै। बिशन भगत की ए फल होई, आद ब्याद शब सके न कोई। सम्मत सत्रह सहस पचावन, हाड़ बदी प्रथम सुख दावन। त्वा प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल

एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाव सिमरओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौनिद आवै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियाँ

इतनी सेवा परवान करनी जी कीर्तन कर जसविंदर सिंह जी लुधियाने वाले आप जी लड़ीवार पितरबाणी कथा राही जोड़न गए उन्होंने पास सुप्या

त्यों नानक दास बोलै सतनाम धन वाहे गुरु जी। राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

ज्यो ज्यो चलह चुभ दुख पावे जम काल सह सिर डंडाहे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडाहे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाहे। हम गरीब मस्कीन प्रब तेरे हर राख राख वडवडाहे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाहे।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

हे उदारो सुखमनी सौख अमृत प्रभ नाम भगतना कह मन विश्राम रहाओ। प्रभ कह सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कह सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कह सिमरन काल पर हरै, प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत काज बिगल न लागै, प्रभ कह सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कह

नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नाव निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होय सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला

का जी पिहित। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उदरे पद बहुमूच। बहुत सियान पजाम का पहु ब्यापे, अनक जतन कर त्रिसन ना तरापे। भेख अनेक अगन नहीं बुझय, कोट उपाव दरगह नहीं सिजय। छूट सनाही उपयाल मुह ब्यापे, माया जाल बरकत उद सगली जम जाने। गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जब दुह जाए। नानक बोले सह सुपाए, चार पदार्थ जिनको मांगे। साजना की सेवा लागे,

अजंत दूरे जागी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारी मुख देव जान सदा सदा है पूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौड़ी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो

वरद्रव कौहिरे है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मान पर लोभ निभावे मिथ्या तान नहीं पार विकार मिथ्या बाह ने विकार बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देहे नानक हरे हरे नाम लय।

कथा पदी साध के संग कुजल हो साध संग मल सगली खोद साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग विजय ब्रह्म नेरा साध संग सब उतन बेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक उपर जतन साध की महिमा भरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्म सुमानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा पर फुले साध के संग अभिवास पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सबकी रेण साध के संग मनोहर बैन

चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी कहे गुनाहु नानक जो पाव का सही सुपाहु। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला।

ब्रह्म ज्ञानी तीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कश ब्रह्म भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर सिंह ब्रह्म ज्ञानी केंद्र सिद्ध अमृत बर सिंह ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुग

राज मन तन अंतर सिमरन गोपाल सवि प्रहोद कृपाला दृढ़ अवरह नाम जपावे नानक वैष्णव परम गत पावे भगवती भगवंत भगत कारा।

कबहु होए पंडित करे बख्यान, कबहु मौन धारी लावे ध्यान, कबहु तड़ती थी स्नान, कबहु सिद्ध साधक बहु ज्ञान,

सुखी एको एक एक पछाने तुद कियो सोजी जाने नाम संग जिसका मन माने नानक तिन जन जान्या गुर प्रसाद अपने आप सुजे तिस की जानो त्रिस नाम बुझ जाय साध संग हर हर

लावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेव कव कहते डरे, जैसा साथ ऐसा दृष्टाय, अपने कार्य में आप समाया, सोदित सोदित सोदित सीजिया, गुर प्रसाद तब सब बुझिया, जब देखो तब सब कह मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल, नह कह जन्मे नह कह मरे, आपन चलते आप ही करे, आमन जामन दृष्टान दृष्टाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत राचे था पीव थाप, अविनाशी नाहि के

त्यापुर मान मूर्ख काहे बेलाई प्रभ लिखे का लिखिया पाई दुख सुख प्रभ देवन हार व्रते आंग तू दिसे जतार जो काछे करे सोई सुख मान भूला काहे प्रिय जान कौन बस्त आई तेरे संग लभत रहे ओ रस लोभी पतंग

सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मरणीत। ठाकुर का सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग। सेवक का प्रभु पालन हारा, सेवक की राखे निंकारा। सो सेवक जिह दया प्रभु तारे, नानक सो सेवक साथ साथ सुमारे।

मन मेरे तिनकि ओढ़ लेह मन तन अपना तिन जन देह जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब सोख का दाता तिसकी सरन सर्ब सुख पावे तिसकै दरस सब पाप मिटावे अवर सयान सगली छाड़।

ते निर्मल मत लही जन कव प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुख जन पहया जन मरण दुख ब्रह्म गैश पुनी सरदा सा पूरी रब रह सतसंग हजूरी जिसका साथ तन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखे गुर प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरै जे बेख

बांध मुगत कहो किस कहो गणी। जब एक के हरक में उपार तब नरक सुर कहो कौन उतार। जब निर्गुण प्रभु सही सुपाए तब शिव सगत कहो कित ठाए। जब आप हे आप अपनी जो धरे तब कवन निडर कवन कद डरे। अपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अग में अपार। अविनाशी सुखे अपने आसन तह जन मरण कहो कहां विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब

सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पहार, सहस सियाणप लख होए ता इक ना चले नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़ा तुटै पाल, हुक्म

मन कोय मन्ना सुरतो होवै मन बुद्ध मन्ना सगल भवन की शुद्ध मन्ना मोह चोटा ना खाए मन्ना जम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन्ना मार्ग ठाक ना पाए मन्ना पात सिंह प्रगट जाए मन्ना मगना चल पंथ मन्ना धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय।

असंख्य जाप, असंख्य पाहो, असंख्य पूजा, असंख्य तपताओ, असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंग जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंग सती, असंग दातार, असंग सूरमु।

नमस्तंग नुपे नमस्तंग पेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग तर्मंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग तामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग पीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग टाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग अशिदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग अपारे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सुवेके नमस्तंग नेके नमस्तंग भूते नमस्तंग जुपे नमस्तंग दर्घर्मे नमस्तंग दर्परमे नमस्तंग दर्देशे नमस्तंग दर्पेशे नमस्तंग दर्नामे नमस्तंग दर्कामे नमस्तंग दर्ताते नमस्तंग दर्काते नमस्तंग दर्तूते नमस्तंग भूते नमस्तंग लोके नमस्तंग शोके नमस्तंग दर्तापे नमस्तंग थापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिभर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभुगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग भंगे नमस्तंग गम्ये नमस्तरम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग जाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्त अजबे अदेशंग देशे नमस्तंग बेसे नमस्तंग दृतामे नमस्तंग दृभामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्देवे नमस्तंग अपेवाय नमस्तंग अजर्मे नमस्तंग सुबर्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्दयाले नमस्तंग अबर्णे नमस्तंग अमर्णे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग गिरधारंग नमो सर्वतंदे नमो सतबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपूखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्व प्रसाद अरूप है अनूप है अजूब है अपूब है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निधान है त्रिभर्ग है सर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अपर अपर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है चूज है चंज है मीक है अर्वीक है तंध है अबंध है निर्भुज है सूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है दृश्रीक है दृढ़ है असम है अगम है अजम है अभूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक है फिरेक है भुजंग प्रयाद छंद नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नसंगी प्रमाथे नमो भान भाने नमो बाल भाने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो भान भाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे समस्ति विभूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगे स्वरंग परम जूते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवस्तर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह साहंग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संग सनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सर्वं प्रणाशी अनुपे रूपे समस्तल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा भृतकर्ता अदो उर्ध अर्धंग अगंग ऊग हर्ता भ्रंग भ्रंग परमेश्वरंग प्रोष पालंग सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग अशेदी अभेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है पीत है पे है प्रभु है अजू है अदेश है पेश है भुजंग प्रयाद छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवंग नृनाथे नमस्तवंग प्रमाते नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अभंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो सा साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वीतंग नमो सर्वज्ञान परमतानंग नमो सर्व नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृसंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे दर्भंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजय बीजे समस्तंग प्रसिजय कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणाशी सदा सर्वदा सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी चरपट छंद त्व प्रसाद
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ ਅਖਲ ਜੋਗਿਆ ਚਲ ਭੋਗਿਆ ਚਲ ਰਾਜੇ ਅਟਲ ਸਾਜਿਆ ਅਖਲ ਧਰਮੰਗ ਅਲਹ ਕਰਮੰਗ ਸਰਵੰਗ ਦਾਤਾ ਸਰਵੰਗ ਗਿਆਤਾ ਸਰਵੰਗ ਭਾਨੇ ਸਰਵੰਗ ਮਾਨੇ ਸਰਵੰਗ ਪ੍ਰਾਨੰਗ ਸਰਵੰਗ ਤਰਾਨੰਗ ਸਰਵੰਗ ਭੁਗਤਾ ਸਰਵੰਗ ਜੋਗਤਾ ਸਰਵੰਗ ਦੇਵੰ ਸਰਵੰਗ ਭੇਵ ਸਰਵੰਗ ਕਾਲੇ ਸਰਵੰਗ ਪਾਲੇ ਰੁਆਲ ਛੰਦ ਸਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਰੁ ਬਨਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਪੁਰਖਾ ਬਾਲ ਸਰਮਾ ਤ੍ਰਭਾਨ ਦੇਵ ਅਭੇਵ ਆਦ ਉਧਾਰ ਸਰਬ ਪਾਲਕ ਸਰਬ ਕਾਲਕ ਸਰਬ ਗੋਪਨ ਕਾਲ ਜਤਰ ਤਤ ਬਿਰਾਜੇ ਧੂਤ ਰੂਪ ਰਸਾਲ ਨਾਮ ਠਾਮਨਾ ਜਾਤ ਜਾਗ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਆਦ ਅਸੇਖ ਦੇ ਸਾਰ ਨਾ ਭੇਜ ਜਾਗ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਾ ਰਾਗ ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਬਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਮ ਕਾਮਹੀਨ ਭਿਗ ਧਾਮੂ ਨਾ ਜਾਏ ਸਰਮਾਨ ਸਰਬਤਰਮਾਨ ਸਦੈ ਮਾਨ ਤਾਹੇ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ।

अभक्त विरक्त नास प्रकाशन चिंत सुनंत लिख्य दिख्य लेख पेख्य टाह अगौ है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित्य सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्वप्रसाद सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंतरानं सर्वंकर्मं सर्वंतर्मं सर्वंजुक्ता सर्वंमुक्ता सावर छंद त्वप्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अघा स्वरूपेन्द्रवाद विभूते अनंगी अनामेन्द्र भंगी त्रिकामेन्द्र भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोतरे न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जात न पात नर साकं हरि कै मितोमी कै सदैव प्रवाह अजाह अजाह भगवती छंद त्वप्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुन सलाम है समा सुन कलाम है के साहिब दिमाग है सुन चराग है के कामन करीम है के राज ग्रहीम है के रोजी दहंद है के राज ग्रहिंद है करीमुल कमाल के सुन जमान है गरीबुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है रासुल फिकन है कलंक प्रणास है समस्तुल निवास है गंजुल करीम अर जाय ग्रहीम है समस्तुल जवाह है के साहिब ग्राह है के नरकंग प्रणास है बहसुल वास है के सर्वुल गमन है मेसुर रवान है तमामुल तमीजा समसुल अजीज है परंग परमीशा समसुल अधीशा देसुल लेख है मेसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मित्तो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मित्तो विभूत है के मित्तो प्रसाह है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मित्तो अभंग है मदभार शांत तत्व प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर भर अगंज हर नर प्रभांज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड भर नर अमंड अनुपमनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल तन मुदाम अंशज अंग आसन अभंग उपम अपार गतमित उतार जल थल अमंड दिस सुपर्ण जल थल महन दिस व्यंत अनुभव अनास त्रितर तुरास आजान बाह एक सुदाह ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर काल कर कर प्रणाम चिचर नाम अंश जगात अजना बात अनुचंजगात अनुरंज बात अनुट भंडार अनठट वार आडीर धर्म अतटीर कर्म अन ब्रण आनंदाता महन धरबोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है खल कारण है सर्ववारण है तीर्थ के तरण है जाके करण है मन मान है जग जान है सर्वंग भर है सर्व सर्वंग कर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है पर ते पर है करुणा कर है अजप जप थप थप कृता कृत अमृत अमृत है अमृत अमृत करुणा कृत है अकृता कृत धरणी तृत अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत अमृत अमृत अजबा कृत अमृत अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है नृपतापन है जप जापन है अगला कृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है हर्ता है परमात्म है सर्वात्म है आत्म वास है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग ताम संग शांत रूपे नमो परम ततंग ततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञान भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रे नमो इंद्र इंद्रे अनादक विभूते कलंकार रूपेलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांग बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी रामेन्द्र भंगी त्रिकाले अनंगी अगामे एक श्री शांत अजय अलाय अपय अभय अपु अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अघट अनाथे परमाथे अजुन्नी अमोनी नारागे नारंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अभंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समसुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निर्गामंग विभूते समसुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनिमे हरियंग करियंग करीमल निहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद
पाशय तस्मै त्वा प्रसाद स्वये श्रावक शुद्ध समुसदान के देख प्रयोकार जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधातक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रती बिन एक रत्ती के माते मदंग जरे जरसंग अनूप अवतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप लिप्त न्याव सीसना जात बिचारे ते भय तो काह पय भुपतंत को नागे पाए पधारे जीत भरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हस्त ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कान कर नहीं जात बिचारे श्री बस श्री भगवान भजे बिनु अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नहान दयादम दान सुसंजम ने मनेक बसेखा है वेद पुराण जमीन जमानस वेद पुराण कदेव करान जमीन जमान सबान के पिखा है पावन आहार जति जतार सब सुपचार हजार देखा है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रतीबन एक ना लेखा है शुद्ध सिपाह दुरंद बहा सुसाज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत बंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलाएंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलाएंगे वीर अपार बड्डे बरियार बेचारे सार की धार पशैया तोर दे समलिंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े गडान को तोड़न हार सुबात ने चकचार रवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक ने एक सो एक दवैया दानव दे फलिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मै थल मै पल ही पल मै सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन गे बह पुंज खपाएंगे साध समूह प्रसन्न फिराय जग सत्र सबाय अवलोक छपाएंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरात्म जाम त्रिलोक राज करेंगे कोट स्नान गजादक दान अनेक स्वंबर साज बराएंगे ब्रह्मेश्वर विषम विषन सची पतंत फसेजम फास बराएंगे जे नर श्रीपद के प्र सहभग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दोलोचन मूंद कै बैठ जो भक्त्यान लगायो नाथ फिरियोलिया सास समंदरन लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो विज्ञान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सब बैस बितायो साज कहूँ सुन लिहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो काहू लै पाहन पूज तरहो सिर काहू लै लिंग गर लटकायो काहू लखर वाची दिशा मह काहू पिशागो शीस निवायो कहू भूतान को पूजत है पास को मृतान को भोजन धायो कूर क्रिया उर्जो सभी जाग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया उर्जो सभी जाग श्री भगवान को भेद न पायो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाज बेंती चौपाई

हूँ सिमट पे हो शंकर कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आजुगा स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जमन पग भरे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो अकाल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाहे निहर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हो ही दुष्ट शवाय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा

आया लभ लुभ अहंकार चुका सदगुरु भला पाया कहे नानक सुनवाप तुठा तेरा अमृत गुर से पाया भगतां की चाल निराली चाल निराली भगतां केरी बिख मार चरणा लभ लुभ अहंकार ताज

दर्शन प्रसयाय गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सलोक बसंत स्वर्ग लोक का है जितते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमण है। बसंत स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमण है। कौतक कोट

जिसको दे जिस मिले सच तत्नी सच घुमाया, सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन गवाया, मुझ दुनिया का ही आया।

0: सच्चा साहिश संभाली हो जिन्हें की सोपार पाया को ना करते किए बाता जो कुछ करना सो कर रहे हैं महला दूजा
1: योग शब्द ज्ञान शब्द वे शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द सूर्य शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने भे ओ नानक का दास है सुन नन्हे महला दूजा।

साधन मारिये, जेहा कालै कालना ते वेहो ना उपचारिये, ऐसी कलना खेडिये चित्र के गया हारिये, पढ़िया त्यो मिया विचार के विचारिये, मोह चले सोके मारिये।

साहिब जी सतनाम धन वाहे गुरु जी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मानै

संगत तै मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखव शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखव शरणाई सो कहो टल गुरु सेविया एहन सो सहज सो पा

अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रत्नो पाए तेरे अचर तीरथ नाले गावे जोत महावल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे सही तुदनो गावे जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चतने आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाही है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर वेखै किता अपना जिव तस्ती वट आई जो तस भावै सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पात साओ सा पात साहेब नानक रहण रजाई मंदा संतोख सरम पत चोली त्यान की करे बपूत खिंथा काल कुवारी काया जो तरना प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश से सह आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भोत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी।

सुदर रागा संहला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोदार तेरा कहा सो कर कहा जत वे सर्व समाले वाजे तेरे नाद नेक संका केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परिसो कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुनो पवन पणि वे संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुनो चित गुप्त लेके जानना।

साध विचारे गावन तो नो जति सति संतोखी गावन तो नो वीर करारे गावन तो नो पणत पणर की सर जुग जुग वेदा नाले गावन तो नो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मच पयाले गावन तो नो रत्न पाए तेरे अक्षर तीरथ नाले गावन तो नो जोत महावल सूरा गावन तो नो खाणी चारे गावन तो नो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुनो गावन ज्योत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुनो गावन सिम जतनावन नानक किया बेचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाही हैपी होसी जाय नंजासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन पाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिसदी वड़ियाई ज्योतिष पावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पासा सा पास साहेब नानक रहण रजाई असम हला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवट वड्डा टीठा होए।

सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई कहना जाई तेरी तलवड़े आई सब सत सब तप सब चंगियाईया सुधा पुरखा किया वड़ियाईया तुद बिन सिद्धी किने ना पाई है करम मिले ना ही ठाकर हाई है आखण वाला क्या बेचारा सिती परे तेरे पंडारा जिस तू दे तसे क्या चारा नानक सच सवारण हारा समहला पहलाओ आखा जीवा विसरै मर जाओ आखण औखा सच नाओ सचे नाम की लागै भूखा उत भूखै खाए चली है दुखा सो क्यों विसरै मेरी मां।

काहिरी मन चित्त वे उद्दम जा आहर हर जियो परिया सैल पत्र में जनते उपाय ता कार्य जिक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सार संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके का स्तरिया रहाओ जरन पिता लोक सत बने ता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया हुड़ै हुड़ आवै सह को साथ इस पाछै बचरे छरिया तिन कवन खुलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया सवन दान दस अस्त सदान ठाकुर कर करतल ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बलबल सदबल जाइय तेरा अंत न पारा भरिया राग अस महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै तू जी हर सच्चे सज्जन हारा सब जी तुम्हारे जी तुम जिया का दतारा हर त्याव संतो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सरमद अंतर जी हरे को पुरख समाणा एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे पुता जी हत बिने अवरना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुणी अंक बखाणा जो सेवै तू जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावे तू जी से जन जुग में सुखवासी से मुगत भजन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फासी जिन नरपाओ हो जिन हर नरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब सब गवासी जिन सेवे आ मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन वले जासी तेरी भगत भंडार जी परे वे अंत आओ तेरे पग सलाम तू जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक कर हर पूजा जी तप तापे जपे वे अंता तेरे अनेक पड़े वो सिमरत सास्त जी कर करिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख परम्पर करता जी तुझे बड़े वरना कोई तू जो जो एको सरा सरा तू एको जी

आओ गुप्त प्रगट होए वैसा लोक राखै पाओ मत देख भूला बिसरै तेरा चित न आवै नाओ सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख भूला बिसरै तेरा चित न आवै नाओ श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी अरजा पवन पीहण अपे आओ चंद सूरज दोए गुफा न देखै।

छाया कमलानी, कुवार कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया मन बाज पतारा, कागियों डावत पुजा पिरानी, कह कबीरे कथा सुरानी, सुही कबीर जी अमल सिरानो लेखा देना, ए कठन दूत जम लेना, क्या तैं खटिया कहां गवाया। चलो सिताब दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह काया राह, करो अरदास हर फरमान दरगाह काया राह, करो अरदास गाव किछ बाकी लियो नबेरा, आज की राती किछ भी खर्च तुम्हारा सारू, सुबह निवाज सुराएं गुजारू, साध संग जांको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा, हीति उत जन सदा सोहेले, जन्म पदार्थ जीतिया मुलै, जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया, कहो कबीरा तेई नर भूले, खसम बिसार माटी सांग रूले, सूही कबीर जी ओ ललत थाके नहना, सरवन सुन थाके था।

लो रंग तैसे मन में किया रोस मुझे अवगुण से नाही दोस तै साहब की मैं सार न जानी जो बन खोए पाछे पछतानी राव काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हौ बिरह जाली प्रेब हुण कतै सुख पाए जा होए कृपालता प्रभु मिलाए विदन खूही मुंद अकेली ना को साथी ना को बेली कर कृपा प्रभ साध संग मेली जा फिर देखा ता मेरा लोह बेली वाट हमारी खरी ओडीनी खन्यो तिखी बहुत पीणी उस उपर मार्ग मेरा सेख फरीदा पंथ सुमार सवेरा सुही ललता बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला भर सरवर जाबे उछले तब तरण दोहेला हाथ ना लाए कुसुमड़ा जस जल जासी ढोला रा एक आपी ने पतली सह केरे बोला दुदा थनी ने आवी फिर होए ना मेला कह फरीद सहेलियो सहो साले सी अंस चलसी डूमड़ा ਐ ਤਨ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰਾ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਮਨ ਵਡਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਰ ਨਾ ਜਾਈ तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच मह रहो रजाई राऊ जो किच हुआ सब किच तुझते तेरी सब असनाई।

देखा क्या हूँ कथी कथय कथ देखा मैं आकथ ना कथ ना जाई जो तुद भावै सोई आखा तिल तेरी वड्याई।

अनित तेरे। जी जन सब सरन तुम्हारी, सर्ब चिन्ह तुद पासे, जो तुद भाव है सोई चंगा, एक नानकी अरदासे। बुलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन देओ हौ जाचक, तू अलखे अपियो राओ। माया मोत्र कटी नार, भूडी कामन कामने आर, राज रूप झूठा दिन चार, ना मिले चानने अंधियार, चख छोडी सहसा नहीं कोय। बाप दिसे वे जात ना होए, एक को नाही भौ कोए, करता करे करावे सोए। शब्द मुए मन, मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचे धारिया, अवरणा सूजय गुर कहो वारिया, नानक नाम रते निसतारिया। बुलावल महला पहला, गुर बचनी मन सहज त्याने, हर के रंग रता मन माने, मन मुख भरम भुले बौराने, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सके, बिन सतगुर बूझ बुझाई राओ, खेना सतगुर बूझ बुझाई राओ। मेरा

सदा सद बैरागण हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख हर नाली। अकथ कथा कहिए गुर पाए प्रभ गम्य गोचर दे दिखाए बिन गुर करणी क्या कार कुमाए। होमे मेटा चलै गुर शब्द समाए मनमुख विछड़ै खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास। हर कृपा धारी दासन दास जन नानक नाम धन दास। बुलावल महला तीजा अंकर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटांब सहत स्यों जित हुण खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवै अहला जन्म गवाया। दूजा पाहो ना दे लिव लागन जिन हर कै चरण विसारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरा तिन कै तै दुख निवारे। तू दयाल दया पत दाता क्या ए जंत विचारे। मुगत बंद सब तुझते होए ऐसा।

सतगो प्रसाद। मैं आनी पेड़िए क्यों कर हर दर्शन पिके, हर हर अपनी कृपा करे, गुरमुख सौड़े कम सिके।

मन प्यार जे मित्र हर बिन चूड़ पसारे, मन प्यार ये जो मित्र बे सागर संसारे, चरण कमल कर बोध करते सहजा दोग ना व्यापे, गुरपुरा भेटे वटपागी आठ पै जापे, आज गाती से स्वामी भगत नाम अधारे, नान सिख दे मन प्रीतम बिना चूड़ पसारे, मन प्यार या जो मित्र हर लदे खेब सवली, मन प्यारे जो मित्र हर दर नेचल मली, हाथ से वे अलग बेवे ने चल आसन पाया।

फल पायाओ। नदर करे कह अपनी आपे लय मिलाई जियो, हुक्म जिन्हां नूं मनायाओ तिने अंतर शब्द वसायाओ।

परम चुकाया। नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सहल मिलाए जियो, सतगुर मिलिए फल पाया जिन्हें विचों अह कारण चुकाया।

बुरा पलाना पछाण है प्राणी आगे पंत करारा पूरा सतगुर कभू ना सेवया सिर ठाडे जम जंदारा धर्म राय जब पकर सुबरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी।

इनमें सात नया वेजियो नेक बर किए जप तपा गवन किया धरती परमाता एक निर्देश सात नया वे जो कि बहुत

चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, बल तिन संग पछाना जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग किन माए उदारे,

सेव संत साधके सगल मनोरथ पूरे काट काट एक वर्तदा जल थल महियल पूरे पाप बिनाशन सेविया पवित्र संतन की धूरे सब छडाई खासम आप हर जप पई ठरूरे करते किया तपापसो

सुहावणी मिर साधु पीवन हार वाण त्रिण प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलना नो मन लोचदा।

सर्व सुख जिस बख्शे बेपरवाह माघ मंजन संग साधुआ माघ मंजन संग साधुआ धूड़ी कर इसनान।

पढ़िय है सिमरत पाठ अंदर चानण रखिए दीवे बलह पचास चौणे सोयना पाइये चुन चुन खावे कास लोहा मारण पाइये टहे न होए कपास नानक मूर्ख ए गुण बोले।

0: निंदा कर कर बहुत भूता गर्भ झून मैं कर तपया पूरे कुमाण छोड़ नाही जामदूत दस्यो महापिया हम बोले चूड़ कुमार भे घबराहा तृष्णा बूझे बहुत हयान साध रोग उपजो संत दुख देह बनासी महाखिया जिने भाजे तन ही साजे आपे किन्ने संत जिया नानक दास कंठ लै रखे है कर कृपा पार ब्रह्म आहू राम कली महला पंजवा ऐसा पूरा गुरदेव सुहाही जा कसम व्यर्था ना जाई रहाऊ दर्शन पेहत होए निहाल जा की तूर कटे जम जाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार्य सवारे सगले तन के जा के मस्तक रखे हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ तित धारण कृपा निदान सदा सदा जाइए कुरबान निर्मल दे जिस दान तिसे बकार बिनसे बमान एक तियाइए साध के संग पाप मनासे नाम के रंग घर परमेश्वर सगल नमास कट कट रब रहा गुणतास लर्स देह तारो प्रभु आस नित नानक चित बे सच अरदास राग राम कली महला पंजवा कर दूजा दौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गावो राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाइए गावा गुण मिटे मेरे मीत रहा गुण गावत होपत प्रगास चरण कमल मैं होए मनास सत संगत मैं होए आधार हो नानक पौजल उतरे पार हो राम कली महला पंजवा घर पूरा मेरा घर पूरा राम नाम जप सदा सहिले सगल बनासे रो पूरा रहा एक हरादो सच्चा सोहे जा की सरन सदा सुख होए नींद सहेली नाम की लागी भूख हर समर्थ बैंसे सब दुख सहज आनंद करो मेरे पाही गुर पूरे सब चिंत मटाई आठ पहर प्रभु का जाप जाप हो नानक रखा हुआ आप राग राम कली महला पंजवा पड़ताल कर तीजा एक ओंकार सुख प्रसाद नरहा नरह नमस्कार जलन थलन विशुद्ध गगन एक ओंकार हरन तरन पुनो करन नह ग्रह नह नरहा हरन गवीर तीर नाम हीर ऊच मूच अपरन कारण केल सुन अम्बोल नानक बलिहारन राम कली महला पंजमा रूप
1: गौड़ी ग्वारी रे महला पंजमा क्यों प्रमेय प्रम किसका हुई जा जल थल महल रविया सोई गुरमुख उभरे मनमुख पत खोई
0: सत कुलत्र प्रात मीत और

मैं राख, गुर का शब्द अमृत रस चाख, अवर जतन कहो कौन काज, कर कृपा राखे आप लाज, क्या मानुख कहो क्या जोर, झूठा माया का सब सोर, कर्ण करावन हार स्वामी, सगल कटाके अंतर जामी।

प्रभु को जाने सद ही संगा ठाकुर नाम कियो अनवर्तन तृप्त अघावन हर कह दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको वंज एको व्यवहारी अवर न जान बिन निरंकारी हर खोग दुह हो ते मुक्ते सदा अलेप्त जोग अर जुगते दिस सब मैं सब ते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान धरते संतन की महिमा कवन बखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि कृपा की जय।

मन डोलै अमृत बाणी गुरमुख बोलै सब जग साचा जा सच में राते शीतल शांत गुरते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपे हर नाओ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटै संत प्रसाद बंधन ते छुटै संत कृपा ते मिटे मोह भरम साध लेन मज्जन सब।

दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जस कानी रहाओ सहज सुख आनंद निदान राखन हार रखने निदान दुख दर्द बिनसे पै भरम आवन जान रखे कर कर्म पीखे बोले सुने सब आप।

कल्पना मन दंद्रिया को पुनःचार हर नाम जी प्राणदार सच तन पाय हर अंग दूत तरे साध के संग सुख बैस संसजन परिवार हर तन कट्यो जा काना है समार जिसे प्राप्त तिस गुर देहे नान बिता कोई नाहे गौड़ी गुरि महला पंजमा अपनी तो तत्काल बिन जाय माया जंजाल असर मोराम को नीत सुख पावो मेरे भाई मीत नीले कदम सुहानी राम नाम आरंभ बाणी रहाओ एका तेरे जाए हे विकार सिम राम नाम जमार तमराय कह दूतना जोहे माया मगना कुछ मोहे

चूड़वा जा सच कर जाती सत होन मन लगे न राती बावे मर टेढ़ा चलना सीधा छोड़ और पुठा बोलना दुआ सिरा खसम प्रभ सोई जिस मेले नान सो मुक्ता होई गौड़ी बेरी महला पंजमा कल जो मह मिल आए संजोग जित्र आग्या तिजर भोगे भोग जल ना पाइए राम स्नेही किस जोग सती उठ ओई राव देखा देखी मर जल जाइए प्रे संग न पावे बोझ परवाइए से संजम प्रे आग्या माने ते नारी को दुख ना जमाने कहो ना जन प्यो परमेश्वर कर्म जानिया तन सती दरगे परवानिया गौड़ी गेरी महला पंजमा हम धनवंत पर सच ना आए हर गुण गावे सहज सुभाए रहो प्यो दादे का को डिटक जाना ता मेरे मन प्यार निदाना

लगाई, कोना जिस मस्त लेख लखाई, सुहेद खजाने हैं लिया रुलाए, गौड़ी महला पंजमा। डर डर मरते जब जानिए दूर, डाचू का देखिया भरपूर, सतगुर अपने को बल जारे, छोड़ न जाए सर पर तारे रहो, दुख रोग सो बिसरे हे जब नाम, सदा ना जा हर गुण गाम, बुरा भला कोई ना कही जय।

सामुका जापे ताको काड़ा कहा व्यापे सहनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर आए रहो जाके चिंत बसे मन आए ताको चिंता का तू नाहे जाके बिनसियो पामा तय परमा ताके कछु नाही डर जमा जाके हृदय दियो गुरनामा कौन आन ताके सर निदाना गौड़ी महल्ला पंजमा

कछु नाही कालंगा माधो तो जा को हो आस मारी ता कछु नाही संसारी रहो जाके हृदय ठाक रहो ताको से सनाही कोई जाको तुम दी नी प्रवतीर ताक निट न्यावे पीर कोना मैं सो गुर पाया पारना पूर्ण दिखाया गौड़ी महला पाइमा दुर्लभ दे पाई बट बागी नाम न जपे थे हे आत्म काती।

जागरे से हृदय बसे भगवान गौड़ी मोहल्ला पंजा एक सुझा का मन रहता बेतीजे प्राई दाता नदी से कोई कर्ण कराव करता सोई रहो मन सुमावे कमावे मुखार हार बोले सो जा।

रागद्यागोर पोरे आबो मानो को लागो संताप गुरु गुरु जप मीतो मारे मोको जहो विदरबार हो हो चाहे देव साई दो दुश्मन तेरी है देव लाई और का सत मेरे साई दाल पे सगल जीज भाई गुर पूरे जब कृपा करी पद नान मेरी पूरी परी गौड़ी महला पंजमा अनेक रसा काय कहे जैसे टोर मोक बे जेवड़ी बांधे चोर मित दे सा जोना आव जान जो नहीं दोगे ना राव अनेक बस्त सुंदर पर

जपे दिन रात गौरी मोहल्ला पंजवा। तुझ माँ तू है मेरा स्वामी, सौगे तुम ते तू अंतर जामी। पाप नाम पूंजन ओठ, तेरी सन उतरे जन कोट रहो। जेते जी तेरे ते सब तेरे, तुम ही कृपा ते सुख घनेरे। जय कस भरते सब तेरा पाना, हुकम होश सच समाना। कर कृपा दीजे प्रधान, नानक सिमरे नाम निदान। गौरी

सिया मन माही ताको दुख रू सुपने भी नाही राहो सरदा राखे हे जन माही ताके संग किल्ब दुख जाए जानकी महिमा कत न जाए पाम रंजा रे असमाए कर कृपा प्राभ नौकर नीजे दास की तूर नानक को दीजे गौरी महला पंजमा हर सिमर तेरी जय बलाए सर्व कल्याण वसे मन आए पंजमा मेरे एको नाम जी तरह के आवे काम राव रहा जिस कौन का उन्नता और पूरे कि निर्मल

निस्तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे। गोविंद गुण गावो मेरे भाई, मैं साधु हर नाम तिहाई। राव दुर्देह हुई परवान, सब के पाया नाम निशान। हार सिमर उन पद पाया, सासाहर पर मटाया। जात का देखो ता दरिया सुमाए, नान दास हर विसरण आए। गौड़ी मल्ला पंचमा, गौर जी के दर्शन को बर जाऊं। जप जप जीवा सत गुर नाऊ, पार ब्रह्म पूरे गुरुदेव। कर कृपा लागो तेरी सेव राहो।

जाए, बिन हसिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग भी समाया, गोरंग सुबह न्याल और नानक गुर पे है दयाल, थोड़ी मल्ला पंचमा सिंह स्वामी गुरुना से छू से आए अन्ना धनवासे, राम जना को राम प्रोत्साह, नाम जसा मेठ हुंदे साराओ, सासा को न प्राति उन गोपाल गाइये दिन राति, करके बाबा बंधन छोट चरण वासे जी दिनी ओट, कौ नान मान पही प्रदयित, निर्मल जाप वतन जान नीतो, गौड़ी महला पंचमा हर चरनी जा का मान लागा, दो दर परम ताका पागा, हाथन को पारी पूरा तिन वास जन सूरा, राव जा को पय कृपाल गुसाई, तेदार लागे गुर की पाई, सुख सह सात नंदा जावे जीवे परमानंदा, नाम रास साध संकाटी, कौ ना प्रभ अब धा काटी, गौड़ी महला पंचमा

बख्श लियो प्रभु अंतर्जामी गौड़ी मल्ला पंचमा राव के चरण मन माए ध्यान सब तीर्थ मंजन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म के मल ले जाई राव हर की कथा रिध महेश बजाई मन बच सगले बल पाई जिन मरन जन परवान जा कर देवसे भगवान कौ नानक से जन पूरे जिना प्राप साधु तूरे गौड़ी मल्ला पंजमा खादा पहन दम मुकर पाए ते

ऐसा परे हो परे मजो पाग्राम कौ नानक टाले तार मंगोड़ी मल्ला पे मैं कर कृपा पे टेकुर सोई ते बारो न ब्या पे कोई राम रम तन सागर सन सूर भारी साव कागर राव सागर मत दियो हर नाम ए आसर पूर्ण पे काम जापता संजय पूरी बड़ियाई गौर कृपाल हर पे सहाई मानो कोई गुर परमा पेक नानक पसरे पारवा गौड़ी मल्ला पंजा देवराज ते अंदला पारी दुख लागे राम नाचदारी ते दास को तू ही बढ़ियाई माया मंग नरक ल जाई रहाओ रोग रिस्त तारे नाओ पे माते काटाओ न डाओ चरण कमल सो लागी प्रीत आर सुखा नहीं आवे चीत सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी मैं नानक हर अंतर जामी गौड़ी मल्ला पंजा आठ पैर संगी बटवारे कर कृपा प्रलयन वारे ऐसा हर सिर मोजा कोई सब कला पूर्ण प्रभु सोए रहो मां तब तू सदार प्रभु खिन में हार तार नार नेक बंधन तोरे नहीं जाए सिम नाम मुक्त फल पाए ओकत सियानप इसते कछु नाही कर कृपा नानक गुण गाए गौड़ी मल्ला पंजमा

जय पा जाइए तो नाम नाल मेरा स्वामी नानक को मिल आए तुर जामी गौड़ी महला पंजमा जो प्राणी गोविंद आवे पढ़िया अनपढ़िया प्रमुख पावे सब सिमर गोपाल नाम झूठा तन माल रहाओ रूबा सोचो सियाना जिन जानिया मान्या प्राव का पान जाग में आया सो भरवान करा रे अपना स्वामी जान को ना जाके पुन पाग हचन था कमा लाग गोरी मल्ला पंजमा हर के दास सुरा नहीं संग जो बेगी सुरा

साधन साधे अनेक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसना गादे सिम साध वेद बखाने जो ज्ञान से सुख जाने

सांस अमर जाई कर कृपा संत मिले मतिन के तीर्ज पाया शांति मां दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया।

न परे होता गर्भ सुगा मार्ग प्राप्त के संत बतायो नानक दास भक्त है जसुआ कौड़ी मल्ला पंचमा तो कौन कुमारा मेरे पीतम प्राण दारा रहाओ अंतर पे तुम्हें जानी तुम्हें साजन से ले सर्वगा ते तो जी पाए मैं ठाकर अगा तो ले बना सा क्यों तुम रे रंगा गुण दान सुखदाते गम गुण प्रभ मनासी पूरे गुरते जाते परम पो काट किए ने केवल जब दे हमें मारी जन्म मरन तो को चुको सहसा सा संतर सारी जन्मकार करो गो सेवा मां जो लग भरिया जे प्रसाद दे पव ज तरिया ने नानक प्री संग मेरिया गौड़ी महला पंचमा तो मैं कौन जावे तो ही तेरो रूप सगर देख मोही रहो सुर प्याल में तपो मंडल

कर प्रतपालाओ। जिसनों तुम्हें दिखायो दर्शन सा संगत कै पाछै, कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो वाछै। गौड़ी महला पंजवाओ, हाओ ता केवल हारी जाके केवल नाम अधारी रहाओ। महिमा ता की केतक गनिया जन पार ब्रह्म रंग राते, सुख सहज आनंद तिना संग उन संसर अवर ना दाते। जागत उदाहरण से आए जो जन दर्श प्यासा, उनकी शरण पर है सो तरिया सत संग।

अपने सेवक संग तुम प्रवराते होत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहै जैसे दृष्ट हो चंद चकोरी राम संत मैं पेद किच नाहीं एक जन कही मह लाख करोरी जा कहिए प्रगट प्रभ हुआ आंदन कीर्तन रसन रमोरी।

जय कृपा उन संतन के संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा। तुम हर सेती राते संत हो निवाह लेहो मोको पुरख बधाते ओ।

गुर ज्ञान मन है प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तिया, अन पै ठहरायो, मान आ गया सर्व सुख पाए, दुख है ठाओ गवायो। जौ सो प्रसन्न पै प्रभु ठाकुर, प्रभु जौ सो प्रसन्न पै प्रभु ठाकुर, सब आनंद रूप दिखायो, ना किछ आवत ना किछ जावत, सब खेल कियो हर रायो। कहो नानक अगम अगम है ठाकुर, भगत के

हर थाको नाम जपी जय रे रहाओ। मन की मत त्याग्यो हर जन हुकम बूझ सुख पाई रे। जो प्रभ करै सोई पल मन हो।